0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: आ रक्षाबंधन मात्र भाईनी कलाई पर राखड़ी नहीं,

0: गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिसने गोविंद यो बताए। गुरु ए तो परम आदरणीय अने वंदनीय होय छे। जूना जमाना मा राजा महाराजाओ राजगुरु नी सलाह सूचन प्रमाणे राजकाज संभाळता। गुरु नी गादी पण अलग अने सन्मान जळवाय ते रीते राखवामां आवती। आम जो गुरु पोतानी गुरुता जाळवी राखे तो समाज सन्मानी ज अने शिष्यो पण उत्तम पैदा थाय। तमे सांभळी रह्या छो रेडियो पालनपुर पर भक्ति संगीत। मस्त रहो, व्यस्त रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: रक्षाबंधन।
1: आ रक्षाबंधन पर गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम लिमिटेड महिला अने बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित करयो छे राखी मेळो, ज्यां गुजरात राज्यना तमाम जिल्लाओनी बहेनोना स्वावलंबनने प्रोत्साहन आपवा तेमना द्वारा उत्पादित राखड़ी तेमज घरगथ्थु अवनवी वस्तुओना प्रदर्शन सह वेचाण करवामां आवशे। तो आवो, तारीख 14-23 ઓગસ્ટ सवारे 11-10 વાગે राखी मेळो ब्रह्मर्षि हॉल जहानारा बागनी पासे पालनपुर।

0: 90.4 FM रेडियो पालनपुर।
1: आ रक्षाबंधन मात्र भाईनी कड़ाई पर राखड़ी नहीं पण गुजरातनी बहनोना स्वावलंबनना स्नेहथी बनावेली राखड़ी बंधाशे। बधाज तहेवारोमां आवतो भाई बहनना संबंधनो पवित्र तहेवार एटले रक्षाबंधन।
2: आ रक्षाबंधन पर गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम लिमिटेड महिला अने बाळ विकास विभाग द्वारा आयोजित कर्यो छे राखी मेळो, ज्यां गुजरात राज्यना तमाम जिल्लाओनी बहनोना स्वावलंबनने प्रोत्साहन आपवा तेमना द्वारा उत्पादित राखड़ी तेमज घरगथ्थु अवनवी वस्तुओना प्रदर्शन सह વેચાણ કરવામાં આવશે। તો આવો તારીખ 14-23 ઓગસ્ટ સવારે 11-10 વાગે રાખી મેળો બ્રહ્મર્ષિ હોલ જહાનારા બાગની પાસે પાલનપુર।

0: અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા આયોજિત કર્યો છે રાખી મેળો, જ્યાં ગુજરાત રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓની બહેનોના સ્વાવલંબનને પ્રોત્સાહન આપવા તેમના દ્વારા ઉત્પાદિત રાખડી તેમજ ઘરગથ્થુ અવનવી વસ્તુઓના પ્રદર્શન સહ વેચાણ કરવામાં આવશે. તો આવો, તારીખ 14-23 ઓગસ્ટ સવારે 11-10 વાગે રાખી મેળો, બ્રહ્મર્ષિ હોલ, જહાનારા બાગની પાસે, પાલનપુર.
1: गौरव श्रीवास्तव के साथ और आज के इस बड़े जबरदस्त एपिसोड में 80 की दहाई में, यानी कि 80 के दशक में जो है वो गाने जो जीते और वो गाने जो जीतते जीतते रह गए, जैसे कहते हैं ना विनर और रनर अप. तो जो पहला गाना है जो विजयी हुआ, अवार्ड मिला जिसे, वो गाना खयाम साहब ने बनाया, गुलजार साहब ने लिखा, किशोर दा ने गाया. और दूसरा जो बिल्कुल पीछे रह गया जरा सा, वो किशोर दा ने ही गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उसका संगीत दिया और बख्शी साहब ने उसके बोल लिखे, आनंद बख्शी साहब ने. अब ये तो मैंने आपको बता दिया है, अब आप गाने सुनेंगे तो यकीनन बड़ा मजा आएगा. और ये तमाम गाने जो हैं कारवां क्लासिक के, ये सारेगामा कारवां के 5000 गानों का जो नया तोहफा है उनमें से चुन के मैं लाया हूँ. अच्छा, खयाम साहब का ज़रा जिक्र करूँगा क्योंकि फिर विजेता उनका गाना हुआ था. वो दरअसल संगीतकार बनना ही नहीं चाहते थे. हाँ, वो तो केएल साइकिल बनना चाहते थे. 10-11 साल की इनकी उम्र थी और ठान लिया था कि मुझे केएल साइकिल बनना है, क्योंकि साइकिल साहब की फिल्मों से ये खासे मुतासिर थे और इस चक्कर में घर से भाग भी गए थे. अपने चाचा जान के यहाँ पहुँचे थे ये सोच के कि भाई मुझे एक्टर बनना है, केएल साइकिल बनना है. लेकिन इनकी संगीत की शिक्षा वगैरह हुई और उसके बाद भी इनके मन में यही ख्याल था कि भाई आगे जाकर ये अभिनेता ही बनेंगे. लेकिन संगीत ने फिर इन्हें इस तरह से पकड़ा कि वो अभिनय का जो भूत है वो उतर गया और संगीत का जादू जो है वो चल गया. ऐसे और भी कुछ बड़े निराले किस्से जो हैं आज इस एपिसोड में आपके साथ बांटे जाएंगे.

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: किसी को

मतलब बस जीतते जीतते रह गया। उन गानों की जोड़ियां हैं आज के इस एपिसोड में। तो जिस गाने का मैं अभी जिक्र करने वाला हूं, जो विजेता बना, वो दरअसल अमित कुमार साहब ने गाया, पंचम दा ने संगीत दिया, आनंद बख्शी साहब ने बोल लिखे। अब हैरानी इस बात की होती है कि अमित कुमार साहब को तो बहुत पहले 70 की दहाई में मौका मिल गया था, हाँ, और फिल्म बॉबी के गाने जो हैं, ऐसा माना जा रहा था कि वो अमित कुमार साहब गाएंगे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीत देने वाले थे। लेकिन न जाने क्या हुआ, अमित साहब जो रहे वो ज़रा घबरा से गए, वो मुंबई में ही नहीं थे, वो कलकत्ता चले गए कि नहीं नहीं नहीं मैं नहीं गा पाऊंगा। और फिर मौका मिला था शैलेंद्र सिंह साहब को, हाँ, तो फिर वो ऋषि कपूर साहब की आवाज़ बन गए। लेकिन 80 के दशक की शुरुआत में कुमार गौरव और विजेता पंडित स्टार लव स्टोरी में अमित कुमार साहब की आवाज़ ने कमाल कर दिया था। हाँ, गाना भी आप समझ गए जो है, मैं चाहता हूँ इसे आप सुने। और ये तमाम गाने जो हैं वो मैं सारे गामा कारवा, जो 5,000 गानों का नया तोहफा है, उसमें से चुन के लाया हूँ। हाँ, तो बड़े चुनिंदा ये गाने हैं और कुछ बड़े निराले किस्से भी आपका इंतजार कर रहे हैं।

तो एक गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। कुछ बड़े जबरदस्त गाने सारेगामा कारवां जो 5000 गानों का जो नायाब तोहफा है उनमें से मैं चुन के लाया हूं। और आज की जो ये फहरिस्त है उसमें एक गाना जो है वो विजेता और दूसरा बस जीतते जीतते रह गया, और वक्त जो है वो 80 की दहाई का है। हाँ, 80 का दशक जो है उसकी उस दशक की फिल्में, उस दशक के गाने। अभी जो गाना, जो विजेता गाना है वो तो आप सुनेंगे, परवीन सुल्ताना जी का गाया हुआ, मजरू साहब का लिखा हुआ, आर डी बर्मन साहब ने संगीत दिया, यकीनन बड़ा मज़ा भी आएगा जब आप सुनेंगे। लेकिन जो गाना रह गया, उस गाने की बड़ी दिलचस्प एक कहानी है कि लिखा तो हरिवंश राय बच्चन साहब ने, और मतलब एक बहुत पहले लिख दिया था, और कल्याण जी आनंद जी ने फिर इस गाने का उपयोग किया फिल्म लावारिस। अब जब साहब इस गाने का पिक्चराइजेशन हुआ, हाँ, तो बच्चन साहब ने अच्छी एक्टिंग तो करी थी, सारा काम बड़ा अच्छा ही था, लेकिन इस गाने के पिक्चराइजेशन के दौरान बच्चन साहब की शरीक हयात जया जी बड़ी नाराज़ हो गई थी। हाँ, इसके दो वर्जन हैं। जो गाना जीतते जीतते रह गया वो अलका याग्निक जी द्वारा गाया गाना रहा, और एक वर्जन अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ में। तो जया जी इतनी खफा हो गए कि ये क्या, ये इस तरह के लिबास में और औरत के भेष में जो हैं अमिताभ बच्चन, इतने बड़े सुपरस्टार स्क्रीन पे ये काम कर रहे हैं। और ऐसा भी कहा गया कि वो चली गई थी उठ के, इतना नाराज़ हो गई थी। लेकिन आगे जाकर स्टेज शो पर, स्टेज शो जब अमिताभ बच्चन साहब और जया जी किया करते थे, तब इस गाने पर वो थिरकती भी थी बच्चन साहब के साथ। हाँ, तो बड़े ज़बरदस्त ये किस्से हैं साहब, और वो गाना कौन सा वो भी आप समझिए। तो चलिए साहब, एक तो जीता हुआ गाना और एक जीतते जीतते रह गया गाना जो है वो ज़रा सुन लेते हैं।

गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। और आज के इस एपिसोड में जो फेहरिस्त है ये उन गानों की है जिसमें से एक विजेता और दूसरा जीतते जीतते रह गया। वक्त है 80s का, 80 की दहाई। हाँ, तो ये मैं आपको बताऊं कि जो गाना आप सुनेंगे वो विजेता गाना है, लेकिन बहुत पहले भी रियलिटी शोज तो नहीं कह सकते, पर हाँ टैलेंट हंट हुआ करते थे। आजकल तो बहुत रियलिटी शोज का मामला रहता है और एक से बढ़कर एक आवाज़ सामने आती है, बड़े मौके मिलते हैं। पर गुजरे वक्त में फिल्म इंडस्ट्री अक्सर तलाशा करती थी कि एक नई आवाज़ मिले, है ना, और नए कलाकार भी मिले, इस तरह का हिसाब किताब होता था। तो मर्फी रेडियो कॉन्टेस्ट एक हुआ करता था। उस रेडियो कॉन्टेस्ट में दो आवाज़ें चुनी गई थी, एक पुरुष यानी कि महेंद्र कपूर साहब, उनकी आवाज़ चुनी गई, और एक महिला यानी कि आरती मुखर्जी। हाँ, तो आवाजें चुन तो ली गई, लेकिन बहुत वक्त लगा आरती मुखर्जी को एक अवार्ड जीतने में। और एक बड़ा जबरदस्त गाना इन्होंने गाया, पंचम दा ने इसका संगीत दिया था, गुलजार साहब ने लिखा। हाँ, और ये गाना वाकई बेजोड़ है। और आरती मुखर्जी को जब ये अवार्ड मिला तो सबने ही बहुत तारीफ की, अरे वाह, एक तो बड़ी मुख्तलिफ आवाज और गाना भी बड़ा जबरदस्त गाया। और जो गाना रह गया जीतते जीतते वो अनुराधा पौडवाल जी ने गाया था। हाँ, तो ये दोनों ही गाने आप सुनिए, एक विजेता, एक जो जीतते जीतते रह गया, और कुछ बड़े जबरदस्त किस्से जो हैं वो आपका साथ यकीनन निभाते रहेंगे।

नेट हो या ना हो, रेडियो तो बजता रहेगा आपके दिल की धड़कनों में, और इसे धड़कते रखेंगे हम, यानी कि रेडियो पालमपुर 90.4 FM। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर 90.4 FM।

गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप कुछ बड़े जबरदस्त गाने 80 के दशक के, 80 की दहाई के, एक विजेता और एक जो जीतते जीतते रह गया। और ये जो दो गाने मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये दोनों एक ही फिल्म के हैं, एक ही गायक ने गाए हैं, किशोर कुमार। हाँ, संगीतकार तो यकीनन एक ही होंगे, पपीदा, लेकिन गीतकार अलग अलग। हाँ, तो बहुत ज़बरदस्त फिल्म मेकर, निर्माता, निर्देशक प्रकाश मेहरा, वो लिखते भी बहुत अच्छा थे। तो प्रकाश मेहरा साहब का लिखा हुआ गाना जीता और उन्हीं की फिल्म में अनजान साहब ने जब गाना लिखा, वो गाना जीते जीते रह गया, दोनों ही नॉमिनेट हुए थे। फिल्म शराबी। अच्छा, प्रकाश मेहरा साहब के बारे में ये बात बड़ी दिलचस्प है, बतानी भी चाहिए। ये बनना चाहते थे कि भाई किसी तरह से मैं कहानीकार बन जाऊँ, फिल्मों में आऊँ, नाटक वगैरह करूँ, ये पूरा मामला था, लेकिन घर से मुखालफत होगी ये डर था इन्हें। तो बिजनौर के ये रहने वाले, तो बिजनौर में इनकी जो, जिसे कहते हैं ना जनेऊ सेरेमनी जिसे कहा जाता है, जब वो हुई तो रिश्तेदार जो हैं वो कई पैसे, बहुत से पैसे देते हैं, नेक देते हैं ना, लिफाफे आते हैं ना, तो आजकल भी मिलते हैं। तो प्रकाश मेहरा साहब को वो लिफाफे मिले और उन्होंने वो पैसे वैसे ज़रा इकट्ठे करे और एक चिट्ठी लिखी। तो चिट्ठी में लिखा कि मैं बम्बई जा रहा हूँ, उस वक्त बम्बई कहा जाता था, मुंबई है, मैं बम्बई जा रहा हूँ कभी ना वापस लौट के आने के लिए, और अपने वायदे पे ये कायम रहे। हाँ, तो फिल्में भी खूब बनाई, बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया, और एंग्री यंग मैन इनकी फिल्म से ही उठकर आया था, जंजीर। जी हाँ, अमिताभ बच्चन साहब उस फिल्म में बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभाते नजर आए थे, और प्रकाश मेहरा साहब को जो है उनका लिखा जो गाना है उसे अवार्ड भी मिला। गाना कौन सा है आप सुन लो। दूसरा गाना जो है वो ज़रा तड़कता भड़कता है, पहला गाना ज़रा संजीदा है। हाँ, सुनिए इस गाने को, और ऐसे और भी कुछ बड़े ज़बरदस्त किस्से, कुछ बड़े अनोखे गाने आप तक पहुँचते रहेंगे।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: आ रक्षाबंधन मात्र भाईनी कड़ाई पर राखड़ी नहीं पण गुजरातनी बहनोना स्वावलंबनना स्नेहथी बनावेली राखड़ी बंधाशे। बधाज तहेवारोमां आवतो भाई बहनना संबंधनो पवित्र तहेवार एटले रक्षाबंधन।
2: आ रक्षाबंधन पर गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम लिमिटेड महिला अने बाळ विकास विभाग द्वारा आयोजित कर्यो छे राखी मेळो, ज्यां गुजरात राज्यना तमाम जिल्लाओ

0: बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: आ रक्षाबंधन मात्र भाईनी कड़ाई पर राखड़ी।

0: साइड करो।
1: आ रक्षाबंधन मात्र भाईनी कड़ाई पर राखड़ी नहीं पण गुजरातनी बहनोना स्वावलंबनना स्नेहथी बनावेली राखड़ी बंधाशे। बधाज तहेवारोमां आवतो भाई

0: नहीं आज मरीज क्या जता नहीं।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

पक्का पालनपुरी न्यू ओला केटले ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।
1: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ,
0: फिर ना कभी कहना।

बीच में बैठा था मैं, सब बैठे थे आजू बाजू, इतने में बंदूक चली भाई, गांव में आए डाकू हैं।

मैं घर से बाहर निकला सब मेरा नाम पुकारे, मार के लाठी जमी पे जटने डाकुओं को ललकारा, वो थे चार अकेला मैं।